2006 की सुपर डुपर मूवी, वन ऑफ द हिट मूवी फ्रॉम द 2006, जिसको बहुत से अवार्ड भी मिले हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, पीटी जिंता, रानी मुखर्जी एंड ऑफकोर्स किंग खान, द शाहरुख खान एज वेल. और इस मूवी के सारे गाने सुपर डुपर है. और ये मूवी ने जितना बॉक्स ऑफिस में बिजनेस किया, वन ऑफ द बेस्ट

1983 की मैं ये तो नहीं कहूंगा ब्लॉकबस्टर मूवी लेकिन ये गाना ब्लॉकबस्टर मूवी से भी बड़ा निकला मूवी का नाम था कलाकार जिसमें श्रीदेवी एंड कुणाल गोस्वामी अगर आपको याद हो बैक इन द पास्ट कुणाल गोस्वामी जब अपना ये रिलीज हुई थी तो ये श्रीदेवी की ये जो है सेकंड मूवी रिलीज हुई थी उसी साल उसी वक्त विद हिम्मत वाला लेकिन ये मूवी डिसअपॉइंटेड

ये मूवी में म्यूजिक दिया था कल्याणी आनंद जी ने और इसको गाया है वन एंड ओनली किशोर रानी, यस अवर लेजेंड. और ये जो डेब्यू हीरो थे जो कि अपना कुणाल गोस्वामी, इनकी ये पहली मूवी थी. तो ये जो है बड़े द लेजेंड मनोज कुमार साहब के बेटे हैं. और ऑफ कोर्स जो है मनोज कुमार साहब जो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ही इज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है अभी कुणाल गोस्वामी, जो कि आई थिंक ये बहुत कम मूवी में आए थे टीवी में उन्होंने है अपनी जो खुद की एक्टिंग की थी, लेकिन ही कुडंट गो सो फार. तो लीजिए अगला गाना नंबर 8 पे जो मेरी नजर में है आज, हियर वी गो. आपको होपफुली ये बहुत पसंद आएगा, ये वन ऑफ माई फेवरेट है, लेकिन यू नो लेकिन नंबर 8 पे कैन यू इमेजिन, लेकिन बहुत ही प्यार गाना. लेट्स एंजॉय फ्रॉम द मूवी पाठशाला.

2010 की ये मूवी है जो कि अप्रैल 16 अप्रैल को ये रिलीज हुई थी 2010 में पाठशाला के नाम से जिसको डायरेक्ट किया था मिलिंद उके साहब ने शाहिद कपूर एंड आयशा तक किया इस मूवी में ये शायद आपने शाहिद कपूर की अभी नई मूवी आई हुई है दो दिन में रिलीज हुई है कॉकटेल 2 यस उसका भी गाना आने वाला है तो सुपर डुपर गाना लेकिन मूवी ने इतना अच्छा बिजनेस नहीं किया लेकिन मैंने अभी तक ये मूवी देखी भी नहीं है आई एम श्योर आई विल वॉच इट सून नाउ

ये है नंबर 8 पे गाना जिस और ये आवाज जो है माय गुड फ्रेंड सलीम मर्चेंट साहब की है और म्यूजिक भी सलीम सुलेमान ने दिया है. और मैं आपको एक और बात बताऊं, मैंने इनके तकरीबन 4-5 मैंने लाइव शोज देखे हैं, उसमें से 2 कैलगरी में देखे हैं, 1 दुबई में देखा है, और तीनों प्रोग्राम में इन्होंने जो भी खुद का शो शुरू किया इसी गाने से उन्होंने शुरू किया. ए खुदा गया वो ऑफकोर्स अल्लाह के नाम से उन्होंने खुद का प्रोग्राम शुरू किया. सुपर डुपर जो है बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर सलीम सुलेमान. लीजिए अगला गाना जो नंबर 7 पर है, I'm gonna take you back again. Blast from the past. इसमें ऋषि कपूर साहब एंड टीना मुनीम मूवी में थे और मूवी का नाम बड़े दिल वाला, या बिल्कुल मेरी तरह मूवी का नाम बड़े दिल वाला. एंड ऑफकोर्स एक बार फिर से वी गोना गो बैक. अमेजिंग अमेजिंग वॉइस लता जी एंड किशोर दा. एंजॉय. आहा हा

1983 की ब्लॉकबस्टर मूवी यस बड़े दिल वाला जिसमें ऋषि कपूर साहब टीना मोनीम अरुणा ईरानी मदनपुरी अमजद खान जगदीप एंड सारिका मुझे अभी भी यकीन नहीं आता कि ऋषि साहब इस दुनिया में नहीं रहे. वन ऑफ माय दी

1983 ब्लॉकबस्टर मूवी बड़े दिल वाला नंबर 6 पर सॉरी नंबर 7 पे ये गाना है और किशोरदा एंड लता जी क्या बात है ना आई थिंक आज हमारे चार चांद लग गए शो को दोनों का ये फिर से जो है डुएट सुन के लीजिए नंबर 6 पे फ्रॉम द मूवी आई हेट लव स्टोरी म्यूजिक में विशाल शेखर यस वही है अपना विशाल जो कि अपना इंडियन आइडल में है Enjoy this beautiful track.

इसमें ये जो प्लेबैक सिंगर है यस ये हिस्म पाकिस्तान शबकत अबारत अली खान उन्होंने जो है अपने विशाल शेखर के लिए काफी उन्होंने गाने गए इंक्लूडिंग दिस वन एज वेल और जो है 56 फिल्म फेयर अवार्ड्स में आई हेट लव स्टोरीज को चार नॉमिनेशन मिले इंक्लूडिंग बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर विशाल शेखर लिरिसिस्ट बिन तेरे बाय जो शबकत अली खान एंड बेस्ट फीमेल सिंगर फॉर द सेम सॉन्ग बट इन ए फीमेल वर्जन श्रिया घोषाल फॉर बहारा

0: What a beautiful track. Amazing, amazing track by the Vishal Shekhar sahab aur awaaz of Khush Afkat Amar Malik Khan. Aur aapko pata hai ye jo hai ab ye to ye gaane mein jo female singer kiski awaaz hai? Aapko pata hai? Sunidhi Chauhan ji ha inka awaaz kitna different lag raha hai because isliye normally jo hai Sunidhi Chauhan ji, you know she like jo hai apna sings mostly hip hop song. Ki ye bada romantic, ye bada slow song hai but awaaz is looks very amazing in this ये गाने में बड़ा सुपर डुपर ये मैच हो रहा है ये गाने के साथ और ये गाना ये जो मूवी है इसको जो है डायरेक्ट किया था पुनीत मल्होत्रा ने और प्रोड्यूस बाय हीरो जौहर एंड द करण जौहर फ्रॉम द धर्मा प्रोडक्शंस अंडर यूटीवी मोशन पिक्चर्स इमरान खान इसमें लीड एक्टर थे विद सोनम कपूर और मोस्टली जो है मूवी शॉट हुई थी मुंबई एंड क्वींसटाउन जो कि न्यूजीलैंड में है और इमरान खान ये वही है जो आजकल हमें नहीं दिखते आई थिंक उन्होंने बहुत ही कम मूवी में आए थे आई डोंट नो आई थिंक ही डिड डू दैट वेल तो इतने ज्यादा चले नहीं बट आई थिंक जो है वन ऑफ द मूवी ही डिड वाज दिस वन आई हेट लव स्टोरी इन 2010 आज का जो शो है इसको जो स्पॉन्सर किया ऑप्टिमा आईवेयर एंड ऑप्टोमेट्री जिनकी दो लोकेशन है एक जो है एड्री में है और एक जो है कैलगरी नॉर्दर्न हिल नॉर्थ वेस्ट में अगर हम नॉर्दर्न हिल नॉर्थ वेस्ट में आएंगे तो यू माइट फाइंड मी देयर अगर आप आ रहे हैं अगर आपने कोई भी ग्लासेस चाहिए या तो आपको जो कॉन्टेक्ट लेंस चाहिए या तो सन ग्लासेस चाहिए तो यू कैन स्टॉप बाय नॉर्दर्न हिल लोकेशन अगर आपने डॉक्टर जो आईज चेक करवानी ऑफ कोर्स यू कैन टेक एन अपॉइंटमेंट एज वेल एंड वी लव टू चेक जो हमारे डॉक्टर जो है आप पर आपका जो है अपना आपको प्रिस्क्रिप्शन देंगे एंड आई थिंक यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी आई कैन बेट यू दैट इसके लिए हमारे स्पॉन्सर हैं सुल्तान बैंक्वेट हॉल अगर आपने कोई भी शादी है या तो फिर कोई कॉन्सर्ट है कोई मीटिंग है फॉर अबाउट 400 पीपल यू कैन जो है बुक सुल्तान बैंक्वेट हॉल अवर गुड फ्रेंड गुलाम रसूल यू कैन कॉल हिम एट 403-280-6677 A to Z वैक्यूम अगर आपके वैक्यूम में कुछ भी अगर आपने जो सर्विस करवानी है या तो जो है नया लेना A to Z वैक्यूम वेरी वेरी जो है जो आप कह सकते जो जो है ट्रस्ट वर्दी ने लाइक अवर गुड फ्रेंड हनीफ माओजी ही रन्स इट 403-207-4882 कास्केट प्रिंटिंग शफीन जीवानी अगर आपने कोई भी प्रिंटिंग करवानी है वर्क और होम यू कैन कॉल हिम इनका फोन नंबर है 403-250-2202 मोबाइल मॉर्गेज स्पेशलिस्ट अलीशा बिनिंग शी वर्क्स फॉर टीडी बैंक जस्ट कॉल इफ यू नीड आजकल जो है अपना मॉर्गेज के काफी रिन्यूअल भी आ रहे हैं लाइक नो What I see online, you can call her Alicia Binning and she can give you the best rate available from the TD Bank 403-681-9687 403-681-9687 अगर आपने बॉस्टन पिज्जा जाना है तो गो टू द सेटल टाउन सर्कल जहां पर आपको हलाल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं इनका फोन नंबर है 403-590-5503 403-590-5503 अवर गुड फ्रेंड संजीव कार्ड ही ओन्स इट हलाल ऑप्शन इट इज अवेलेबल एट बॉस्टन पिज्जा एट सेटल टाउन सर्कल ब्रांच तो लेते हैं छोटे से ब्रेक के बाद टॉप फाइव जो है लेके आपके हाजिर में हो जाऊंगा मैं टॉप फाइव में क्या क्या है आई विल बी लॉट्स ऑफ फन सो डोंट गो एनीवेयर कीप लिसनिंग टू कॉफी जलाल ऑन रेडियो सुसंगम 94.7 FM एक मिनट में चलाता हूँ एडवर्टाइज एयर वी गो Should be okay. Here we go.
1: Small Dinal Superstore वाले Plaza with स्थित इस क्लिनिक विच तुहाड़ी अपनी पाशा बोलन वाले मेल अते फीमेल डॉक्टर्स हर कदम ते तुहाड़े नाल हन चाहे गल होवे बच्चा दी या फिर बजुर्ग

ये पता ये कैसा गाना है, जब भी आप रात को बैठे हो, चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, पर आपके पैर के ऊपर पैर हो, वो ये गाना चल रहा हो, फिर आपको नींद आ जाएगी। वन ऑफ माय या तो आप किसी लॉन्ग ड्राइव से आ रहे हो, ये गाना चल रहा है, ओह माय गॉड, जस्ट अमेजिंग। ये गाना, ये जो है आपको मूवी को 34 फिल्म फेयर अवार्ड्स में जो है तेजाब को 12 नॉमिनेशन मिले, इंक्लूडिंग बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित जी, बेस्ट जो है सपोर्टिंग एक्टर जो चुंकी पांडे, और इनको 4 अपना अवार्ड उन्होंने जीते, इंक्लूडिंग बेस्ट एक्टर जो कि अपना अनिल कपूर साहब, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक जी, बेस्ट कोरियोग्राफी सरोज खान फॉर द सॉन्ग 1 2 3, जिन्होंने सबको गिनती सिखा दी बैक इन द डेज, राइट, 1 2 3 जो गाना था, सुपर डुपर गाना। आज जो नंबर 4 पर जो है मेरे लिस्ट पे, लेट्स रेडी टू जूम, फ्रॉम द मूवी दिलवाले दुल्हनिया, ले ही जाएंगे। और आवाज अभिजीत एंड द लेजेंड आशा भोसले जी, द वन वी जस्ट लॉस्ट कपल ऑफ मंथ्स अगो, आरआईपी आशा भोसले जी। लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक, शाहरुख खान एंड काजोल।

1995 की ब्लॉकबस्टर्स से भी बहुत ऊपर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे DDLJ जिसको अपना जो डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा ने और इनका ये पहला जो आदित्य की ये पहली मूवी थी एज ए डायरेक्टर जो कि अपने फादर यश चोपड़ा जी के साथ वो अपना काम कर रहे थे आपको शाहरुख खान एंड काजोल और उन्होंने पूरी इंडियन हिस्ट्री को घुमा के रख दिया हिला के रख दिया

We are listening to Coffee Jalal on Radio Radio System 94.7 FM. जी हाँ, आज मैं आपको जो है जलाल टॉप 10 सुना रहा हूँ. तो ये था नंबर 5 पे. नंबर 4 पे जो गाना है, अभी सारे एक से बढ़ के एक गाने हैं. आई एम श्योर यू गोना गो क्रेजी ना. ओहो, एक और ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, फ्रॉम द मूवी दिल है के मानता नहीं. आवाज है कुमार सानू है अनुराग.

इसको प्रोड्यूस किया था गुलशन कुमार साहब ने, इसको डायरेक्ट किया था महेश भट्ट जो है, महेश भट्ट ने, और इसमें जो लीड एक्ट्रेस है पूजा भट्ट जो कि अपना महेश भट्ट की बेटी है, इनका ये पहली मेजर मूवी थी, उन्होंने जो है पहले भी काम किया था, बट दिस इज विद द बिग आर्टिस्ट ऑफ कोर्स वन एंड ओनली मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के अगेंस्ट में थी, और ये सुपर डुपर मूवी फ्रॉम द ईयर 1991।

नंबर चार पे ये गाना दिल है के मानता नहीं, नंबर तीन पे गाना वेरी रिसेंट मूवी लेट्स एंजॉय फ्रॉम द मूवी वॉर टू यार, ऋतिक रोशन एंड कियारा आडवाणी और गाने के बोल आवाज जाओ

टाइम कम है मुकाबला सख्त है अभी टॉप टू भी बाकी है ये था नंबर तीन पे फ्रॉम द मूवी वॉर टू जो कि 2025 में आई अंडर द बैनर ऑफ द यश चोपड़ा जी हैं चोपड़ा प्रोडक्शन आदित्य चोपड़ा आई एम सॉरी नंबर दो पे जो गाना है आई एम गोना टेक यू बैक अगेन वन ऑफ माय फेवरेट आजकल ये गाना मैं बहुत सुन रहा हूं व्हाई लेकिन जब भी हम जो है अपने फेसबुक पर जाते हैं तो ये स्टोरी में काफी जो है अलग अलग सीन में चलता होता है लीजिए इंजॉय टुगेदर नंबर टू ऑन जलाल टॉप टेन ऑन जून कौन सी तारीख है 24th 2026

1999 की मूवी संघर्ष. जी हाँ, जिसमें अक्षय कुमार, प्रीति जिंटा, आशुतोष राणा एंड आलिया भट्ट एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट. और ये गाना मैंने सुना अपना बहुत आजकल चल रहा है और ऑफकोर्स को गाया है सोनू निगम साहब ने. अगर आपने हम जो है अगस्त 7 को सोनू निगम जी का जो है बर्थडे सेलिब्रेट करें, इफ यू कम ज्वाइन द पार्टी, टिकट्स आर ओनली $30 and $50 फॉर द VIP इंक्लूडिंग द फूड. तो लेट्स यू कैन कॉल मी, टेक्स्ट मी 5878994788.

ये था नंबर दो पे गाना. नंबर वन पर कौन सा गाना है? दिस फ्रॉम द ब्रांड न्यू मूवी, जो कि अभी दो तीन दिन पहले ही जो है रिलीज हुई है. और आजकल गाना ये बहुत चल रहा है.

याद आया कुछ फ्रॉम द मूवी कॉकटेल 1 जो कि 2012 में आई थी ना इसका रीमेक लाइक नॉट अ रीमेक कॉकटेल 2 2026 में रिलीज हुआ एज सो फार सो गुड शाहिद कपूर कृति सनन एंड रश्मिका

ये मूवी जो है पिछले फ्राइडे को रिलीज हुई है. सो फार जो तो उन्होंने 5 दिन में जो बिजनेस किया ऑलमोस्ट 65 करोड़ इंडियन रुपीज का अभी तक बिजनेस किया. आई एम श्योर इट्स गोना बी 100 करोड़ आराम से हो जाएगा. फ्रॉम द मूवी कॉकटेल टू

0: 9876174696।
1: सोने घर दी निशानी हुंदी है शानदार फ्लोरिंग, जिथे कदम रखदिया ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी दा पता पुछन लग जान। ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर, जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंदी फ्लोरिंग दा समान। फ्लोरिंग घर दा होवे या होवे कमर्शियल, नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान, कारपेट, हार्डवुड, लेमिनेट, टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनां नाल भरिया है इना दा शोरूम। अज ही इना दे शोरूम ते पुजो, 2935 19th Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कैलगरी कारपेट एम्पायर। फोन नंबर 403-510-1515, 2935 19th Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
3: ताजियां सब्जियां, फल फ्रूट, दालां, मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा। कीमतां कट ते क्वालिटी A1।
2: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
3: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां। हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक।
2: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर, पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमिंस ड्राइव,
3: दूजी लोकेशन 117-7780 एवेन्यू,
2: तीजी लोकेशन 570-6520 फॉल्कन रिज बुलेवार्ड,
3: चौथी लोकेशन 606 सिटीस्केप स्क्वायर,
2: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे,
3: छेवी लोकेशन 400-45 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी।
2: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
3: 403-835-2222। नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे कैसल रिज एरिया दे विच है लॉट खरीदन दा शानदार मौका, जिथे बनाए जा सकदे ने 3 टाउन हाउस। एना ही नहीं, एना तिना दे नाल लीगल बेसमेंट सुइट भी बनाईया जा सकदियां ने। बिल्डर्स ते इन्वेस्टर्स लई है शानदार मौका। फ्यूचर रेंटल इनकम लई है ए एक बहुत वधिया ऑप्शन। वधेरे जानकारी लई कॉल कर सकदे हो एमे नू 403-617-2111 ते अमन गिल नू भी कॉल कर सकदे हो 403-479-7007 ते। बिल्डिंग परमिट पहला तो ही अप्रूव्ड है।

0403807790 स्टार मूवी। इस प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर कीता सी पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिद्धू ते लवप्रीत सिद्धू ने जिहड़े कि कैलगरी दे विच लंबे समय तो इंश्योरेंस दीआं सेवावां दे रहे ने। जेकर तुसीं लाइफ इंश्योरेंस करवाउणी है जां सुपर वीजा इंश्योरेंस करवाउणा चाहुंदे हो ते 4034043500 ते इन्हां नूं कॉल कर सकदे हो पंजाब इंश्योरेंस। पिक्सल फोटो स्टूडियो ने इस प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर कीता सी जी जिहड़े कि सवाना बाजार दे विच ने ते इन्हां दा सुनेहा है कि ए पासपोर्ट साइज फोटो सिर्फ $7 दे विच बना के दिंदे ने। इस तों इलावा जेकर तुसीं फैमिली फोटोज बनाउणियां ने जां बच्चियां दीआं फोटोज करवाउणा चाहुंदे हो पोर्ट्रेट्स बनाउणा चाहुंदे हो तां इन्हां नूं कॉल कर सकदे हो 4039470060 ते पिक्सल फोटो स्टूडियो। प्रोग्राम के अगले स्पॉन्सर ने जी मदर इंडिया रेस्टोरेंट जिथे तुसी नॉर्थ ते साउथ इंडियन फूड का लुत्फ उठा सकते हो। तवे वाली टिक्की खाण नू दिल करे ते भावे दिल करे डोसा खाण नू ते जे दिल करे चाट खाण नू ते इत्थे चाट दे लाइव काउंटर्स भी ने ते नाल ही स्पैशल मालपूड़े भी मिलते ने। खीर ते गुलगुले हर शनिवार ते एतवार मिलते ने। ब्रेकफास्ट बफे दे विच सवेरे 10 बजे तो लैके शाम दे 4 बजे तक तुसी एंजॉय कर सकते हो 40+ डिलीशियस आइटम्स। नॉट 14 इट्स 40 40 मेहमाना तक लई प्राइवेट डाइनिंग भी अवेलेबल है 24/7 24 घंटे खुले हुंदे ने। ए सब तो खास गल है सिटीस्केप लैंडिंग प्लाजा दे विच लोकेटेड ने। इन्हां दा फोन नंबर 4039367777 है जी। मदर इंडिया रेस्टोरेंट मां दे हत्थां वर्गा स्वाद।